काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि नहि रक्षति दुःखं करणे नहि नहि रक्ष

जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहे समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन ज्योत रहे लिवलाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई आनंद मूला नाथाधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हमें मार मिले पगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदा

जत सत संजम हरदस माए चौथे पद कौ जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवाण नात स्मरण न आवण जाण ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर सच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहुपेखै घट पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पयावै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए

कोई ऐसोरे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावे पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना धीर है मेरे करके पंचा कोई ऐसोरे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अह बुद्ध मैल लाए कर को ठाकरो एक तिल ना मन है कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सुनान सगलिया शर्म कीने मनुआन है पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेख है जिस भेटिए सफल मूर्त करे सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेख है मन अठ जो कमावे तिल ना लेख है पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण प्राता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी धरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण ने सा तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराधे अहंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोय केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवै बिखला दे शब्द सच्चै गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो सचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में साई समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मने अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साब दुरा वाद वधंदिया जियो
दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्म ही आया हुक्म न बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब सन्यापै साचा सृजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जा तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आई साच वाई गुरमुख साच पछाणा दीना ना दयाल निरंजन अंधन नाम वखाणा करनी कार तुरो फुरमाई आ मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी संत महला पहला पिरसंग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखे आला लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणिया चार नहीं रंग राती अवगुण बह बह रोसी तन जोबने आकी छाया बिरद पए दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या बूढ़ी कर कालेओ गुर कह पाए चलो साचा नाम ते आए पावै सुख मेलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़ै दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अंदर नाल प्यारे बिन भगती कर वासना होवी सुनियो लोक सवाए नानक सरसी ता पिर पाए राती साचै नाए पिर तन पावै ता पिर पावै नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नहा प्यारी निम्न भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रसमै रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पही मन मारी नानक साच वसी सुहागण पिर स्यो प्रीत प्यारी पिर कर सो है नार जे पिर पावे